माने ऐसी मुझे जम का लूटूर न दस्ते हो दुश्मन बेजारो जर कर मसले बस न दस्ते हो दुश्मन बेजारो जर कर मसले बस मिस्किन वे वर है तेरी।